मैं कहूंगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा

0: हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम
1: दर्शन भिक्षा दे दो
0: मनोहर मोहन कीर्तन हरि ओम
1: वह दर्शन भिक्षा दे दो आगे दो
0: मनोहर मोहन कीर्तन हरि ओम मनोहर मोहन कीर्तन हरि ओम मनोहर मोहन कीर्तन हरि ओम मनोहर मोहन कीर्तन हरि ओम मनोहर

निराश ना हो बेटा, मैं तुमसे दूर हूँ मगर मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। उठो बेटा, गाओ, यह ललित गौर बदन कुसुमाभरण प्रसन्न मुख मुस्कार कमल पत्र समनेत्र से ललिता ललित सुहास।

ये है गौड़ मल्हार, गौड़ सारंग मल्हार दोनों मिल मिले छेड़े तार। बोलत है पर खाती रिंझ गाओ गौड़ मल्हार।

यह है पुरिया, रत्न मुकुट सर छत्र और चामर मुख में पान, राजा रूप कल्याण की पुरिया जाति जान।

यह भाग्यश्री विद्वानों की वाणी में बसकर विजय दिला रक्त वर्ण वागीश्वरी मंद मंद निकदार।

0: वाह उस्ताद, वाह उस्ताद, क्या जान लेवा तान है, वाह जियो।
1: मालूम होता है कि बादल
2: गरजे,
0: वाह उस्ताद क्या तादानी है।
1: वाह उस्ताद वाह, हमारे डांस हैं तो आप हैं जिनकी खांसी में भी आलाम।
2: कांता दादा कांता दादा।

एपिसोड 53। नमस्कार दोस्तों, 90.8 एफएम रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, हम सब की जिंदगी का मकसद क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? सुख। हम पढ़ाई करते हैं ताकि सुख मिले, नौकरी करते हैं ताकि सुख मिले, शादियां करते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ बस उसी एक सुख की तलाश में। हमें लगता है कि बस उस मोड़ के पार सुख खड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन कबीर साहब आज रास्ते में खड़े होकर हमें आगाह कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भाई, जिस तरफ तुम सुख समझकर दौड़ रहे हो, वहां कुछ और ही मिलने वाला है। आज का दोहा सुख और दुख की उस परिभाषा को बदल कर रख देगा जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। आइए जानते हैं कबीर के रास्ते में ऐसा क्या दिखा जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। कबीर सुख को जाई था, आगे आया दुख। जा ही सुख धरी आपने, हम जानो और दुख। कबीर सुख को जाई था, आगे आया दुख।

श्रोताओं, कबीर साहब बड़े सरल शब्दों में अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। कबीर सुख को जाई था, आगे आया दुख। वे कहते हैं कि मैं भी इस दुनिया के रास्तों पर सुख की तलाश में निकला था। मुझे लगा था कि संसार की वस्तुओं में, रिश्तों में और भोगों में सुख मिलेगा, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे समझ आया कि जिसे मैं सुख समझ रहा था वह तो दुख का ही दूसरा रूप है। उसके आगे तो केवल पीड़ा ही खड़ी थी। अगली पंक्ति में वे एक बड़ा कड़वा सच बोलते हैं, जाहि सुख धरी आपने हम जानो और दुख। कबीर कहते हैं कि जिसे तुम अर्थात संसारी लोग सुख मानकर अपने गले से लगाए बैठे हैं, जिसे तुम अपनी उपलब्धि समझते हो, मेरी नज़रों में वह दुख के सिवा और कुछ नहीं है। दोस्तों, कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि संसार का हर सुख अपने साथ दुख की परछाई लेकर आता है। आज जिसे पाकर आप खुश हैं, कल उसे खोने का डर आपको दुखी करेगा। यह सुख वैसा ही है जैसे धूप में दिखने वाली मृग तृष्णा। दूर से शीतल जल लगता है, पर पास जाओ तो तपती हुई रेत के सिवा कुछ नहीं मिलता। आज का चिंतन, दोस्तों, आज जरा अपनी सुख की लिस्ट चेक कीजिए। जो चीजें आपको आज खुशी दे रही हैं, क्या वे स्थायी हैं? क्या उनके पीछे कोई चिंता या कोई तनाव नहीं छिपा है? अक्सर हम जिसे सुख कहते हैं वह केवल दुख का एक छोटा सा ब्रेक होता है। आज कोशिश कीजिए उस सुख को ढूंढने की जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, वह सुख जो आपके भीतर है, जो शाश्वत है। कबीर हमें डरा नहीं रहे, वे बस हमें जागरूक कर रहे हैं कि नकली सिक्कों को असली समझकर अपनी जिंदगी का सौदा मत कीजिए। असली सुख पाने में नहीं बल्कि होने में है। बाहर की दौड़ छोड़कर थोड़ा अंदर मुड़कर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो पर। तब तक के लिए राम राम।

0: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM आरजे शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: जाने वो कैसे

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: सच है क्या? सब सच है।
1: पैट्रिक,
2: तुम्ही ट्यून केले रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: रेडियो मन भवन 90.8 FM आरजे शुभांगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: जाने वो कैसे

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे।

0: पल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: तुम्ही ट्यून केले रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: सच है क्या? सब सच है।
1: पैट्रिक,
2: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: रेडियो मन भवन 90.8 FM आरजे शुभंगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका। रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: पी रहे सरकार।
1: थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: तुम्ही ट्यून केले रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभंगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: सच है क्या, सब सच है।
1: पैट्रिक
2: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: कॉमेडियन के लिए रेडियो मन भवन 90.8 FM आरजे शुभांगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नमस्कार, मी शर्मिला राजाराम शिंदे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।